चुनो। उस नौकरी ले हुनर हासिल करो जो तुसी करनी चाहुंदे हो। फ्री टेप सुपने नू हकीकत बनाउंदा है। विचों चुनो। उस नौकरी ले हुनर हासिल करो जो तुसी करनी चाहुंदे हो। फ्री टेप सुपने नू हकीकत बनाउंदा है। टेप विक्टोरिया।